0: गिलास तुम कुफाफ ही।
1: रिफा म्यांस नुल्ला नुना तिम्यास अंतिक्यां सहया आर मनाम प्यास यान रतेर कड़े ते तंबोप शिक्या दिमनुना निफितुंड्रान आर जन मनुना निफितुंड्रान सान्या तिम्यास फत्म्यात से सकुर फम्यासा आम फापन सुना आर म्यासा न्यापंदियन निफितुंड्रान मातेत्या मायनों ने बात क्यान फरानिस नानगना अरनिस नताकें तिफना फोसंतिया रानिस फोलुने कोलोनेल मिकाएला फारुआन मालाकास मेरा मेंजा अरसा चिकन उम्तेन जान चिशा वकन्यां दां जान चिशा वकनिस लुकेन जानिया फसान मसावा अरसान तोम ततारं तिफिरेनेंती कदेमानों अच्छा बंद केरे चरेट सीमाएं स्टाटेराना फनवाना सिंफना वोजने तोम तिफिरेनेंती Timur zany, sarotra zany, ka ny heritsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika. Ary tsika dia manampy, ary rehefa manampy dia tena manampy marina, miteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka, ohatran'izao hitantsika izao.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: तुमको लास तुमको फाफी
1: ते मानना नी अंडरकिन आरा इकोलोजी के वोलू ने मानना नी अंडरकिन आरा इकोनॉमिक फारू जानुए मानो फेरुवना जान जो केटी ने दे चारी आरुवना फुट निजू फा आताकुज़ आज़ा उन रो जाई लांस इकोनॉमिक जाई आफाना मापनरुस न्यूल लमंडित ना फालंजा फापुआरी आफाना यंग चुमा मेचा के फावे निफिशी ना फालंजा फापुआरी देख फानेरीना न्यूल लायारु फा फाना पीना न्यूल आमनी फिल्टेनन्या अंदावनांफ